0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: रिसेंटली मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं ये आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं करते रोजमर्रा की जिंदगी में कि आपके आसपास क्या क्या नियामतें हैं। अब जैसे उस जर्नल में लिखा था कि अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, इनफैक्ट ये तीनों जरूरतें अगर आपकी पूरी हो रही हैं, तो आप 75% ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा अमीर हैं। अगर आज सुबह जब आप उठे तो आपके पास अच्छी सेहत थी, हेल्दी फील किया आपने, तो आप उन 1 मिलियन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो शायद 1 हफ्ते के बाद इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। अगर आप अपना सर उठाकर जीते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं और दिल से शुक्रगुजार हैं, तो यकीनन आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऐसा कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। और अगर आज ये सारी बात, ये सारा मैसेज जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप दुनिया के उन 2 बिलियन लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड हैं जो चाह कर भी कुछ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बिकॉज दे आर डेफ एंड ब्लाइंड। उम्मीद है अभी तक आप ये एहसास कर चुके होंगे कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं।

मैं नहीं जानती कि आपका रास्ता कौन सा है, मंजिल कहाँ है आपकी। मैं खुद को आपकी जगह पर रख भी नहीं सकती। मैं आपकी प्रॉब्लम को अपने नजरिए से सिर्फ देख सकती हूँ। मैं आपको जज भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये आस रखती हूँ कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, खूब तरक्की करें और इस बात को दिल से कबूल लें कि खुद को पहचान लें कि आप बेहद खूबसूरत हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। क्योंकि जिस दिन से हमने खुद को आईने में गौर से देखा, उस दिन से कोई अपने सिवा अच्छा नहीं लगता। वेल, फिलहाल एंजॉय करें एक अच्छा सा अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देव तातला।

मैंने देखा है कि जब हम इंस्पिरेशनल लोगों की बात करते हैं तो जहन में एकदम से आ जाते हैं कई बड़े बड़े से नाम, उन लोगों के जिन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव किया। नेल्सन मंडेला, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज, शेक्सपियर जैसे राइटर्स और थिंकर्स, एडिसन जैसे साइंटिस्ट, हेलन केलर, मदर टेरेसा जैसे रियल लाइफ हीरोज और आइकॉन्स। पर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उन लोगों को जो हमारे आसपास अभी भी हैं, जिन्हें हम रोज मिलते हैं, वो लोग जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एक जंग लड़ते हैं, मुश्किलों का हौसले और हिम्मत से मुकाबला करते हैं, इनफैक्ट मुश्किलों से हार नहीं मानते, भागते नहीं उनसे दूर। ऐसे लोग हमारे बीच ही रहते हैं, हम में से ही कई हैं। आज का शो सलाम है उन हस्तियों को जो हमारे घरों में ही हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के रोल में, जिनसे हमें अभी बहुत कुछ सीखना है।

अच्छा, अगर नियत ना हो कोई काम करने की तो अक्सर वो काम मुश्किल इम्पॉसिबल सा ही लगता है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो, डिटर्मिंड माइंड और सोल हो तो फिर तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्योंकि राह तलब में जज्बा एक कामिल हो जिसके साथ, खुद ढूंढती है उसको मंजिल कभी कभी, पाते हैं कुछ गुलाब पहाड़ों पे परवरिश, आती है पत्थरों में से भी खुशबू कभी कभी।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: एक अच्छी स्मार्ट जिंदगी के लिए कुछ नुस्खे यूं हैं कि तलब महफिल है तो तन्हाइयों को गले लगाना सीख, है जीना गर तो खामोशियों को गुनगुनाना सीख, इरादे आजमाने चाहता है घर अपने तो बस्ती छोड़ साहिल पे घरौंदों को बनाना सीख, नहीं आएगी खुद चल कर तेरे दर पर ना यूं ही बैठ, तमन्ना गर है मंजिल की कदम राह पर बढ़ाना सीख, कौन बुरा है और कौन अच्छा एक दिन खुद ही जान जाएगा, रिश्ते आजमाने से पहले तू खुद को आजमाना सीख, मिलेगा पत्थरों में भी खुदा ढूंढेगा जो दिल से, तू सबसे पहले गुरूरे सर हटाना सीख।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अक्सर जब चेंज या बदलाव की बात आती है तो हम सब डर जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी छोटी सी इनपुट क्या फर्क डालेगी। पर मैं तो ऐसा मन से मानती हूँ दैट यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन प्रेजेंट द वर्ल्ड विद वन इम्प्रूव्ड पर्सन एंड दैट इज योरसेल्फ। यू कैन गो टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू मेक योरसेल्फ इनटू द काइंड ऑफ पर्सन यू एडमायर एंड रिस्पेक्ट एंड बाय डूइंग दिस ईच डे यू कैन कंटिन्यू ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्सेप्शनली गुड ह्यूमन बीइंग।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: हालात कुछ भी हों, फिर भी जिंदगी को सलाम करें। अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े घर, गाड़ियां या बैंक बैलेंस छोड़कर जाने से अच्छा है कि अच्छे कर्म करने का जज्बा उन्हें विरासत में दे। जुगनू से अंधेरों का ना यूं एहतराम कर, सूरज को बुलाने का कोई इंतजाम कर। आएगा किनारा भी क्या तूफान से आगे, बैठे हैं सभी लोग यहाँ दिल को थाम कर। कुछ कर कि जाग उठे तेरा सोया हुआ जमीर, आवारगी का बज्म में ना सुबह शाम कर। उगते हुए सूरज के कदम चूमते हैं सब, तू डूबते सूरज को कभी सलाम कर। बच क्या गया है, लिख रहा है तू जो वसीयत, अच्छे कर्म अच्छी सोच अपने बच्चों के नाम कर।

ही ढूंढते नहीं पर हम में से हर एक में लीड करने की इंस्पायर करने की क्षमता है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी किसी और दुनिया के थोड़ी ना थे, हम में से ही तो हैं। कभी कभी हमें अपना काम छोटा लगता है, हमारा योगदान इनसिग्निफिकेंट सा लगता है। हम सोचते हैं कि हमारा ये छोटा सा स्टेप कैसे बदल सकता है सब कुछ। मत याद रखें, हर सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। सो बिगिन विद वन स्मॉल स्टेप एंड डोंट लेट अदर स्टैंड इन योर वे। अपना रास्ता खुद बनाएं और ये भी याद रखें कि हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग हंसेंगे भी आप पर, बट सो व्हाट। जहाँ कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे, वहीं बहुत से लोग आपको फॉलो भी करेंगे। सो डोंट गिव अप। प्ले द गेम ऑफ दिस लाइफ ग्रेसफुली एंड लिव वेरी वेरी स्मार्टली।

जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव बातें सोचेंगे तो चाहे नेगेटिव कुछ होना हो ना हो, पर हो जाएगा, क्योंकि आप खुद बुलावा देते हैं नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में नेगेटिव बनकर। और साथ ही साथ ड्रीम्स को, ख्वाबों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ड्रीम, ड्रीम बिग, फील इट, बिलीव इट एंड देन फाइनली अचीव इट। जैसे भी हैं उनको फॉलो करें, चेज करें, आप खुद तो एक अजीब किस्म की खुशी महसूस करेंगे ही, औरों को भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। सच में ऐसा होता है, आप किसी भी कामयाब इंसान की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो आप पर एक छाप जरूर छोड़कर जाएगी, कुछ बढ़ने की, आगे बढ़ने की।